0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: चलें दे।

दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बस्टर सबको गोली मारो। मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमी को खेलो, मजा ले लो। घुमा रुम्मा घेलो ओ घेलो ओ घेलो ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घेलो ओ घेलो।

कौन से प्यारों सर पर बांधो तेरे, दुनिया तुमसे खेल रही है, तुम दुनिया से खेलो, मजा ले लो गेलो, कल की बातें कल पे छोड़ो, आज मजा ले लो, मजा ले।

मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे ठेला अरे ठेला अरे ठेला। शादी एक बरस का मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे शादी शादी

अब आटा घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। कह गए बेटा जानी वाकर, अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह।

0: pak ik juist de verkeerde, want het is niet de bedoeling dat ik de jaren 80 nu erbij ga halen. Dus laat ik nu echt wel gaan naar mijn 90s song.
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों हमारा हिस्सा का प्रोग्राम में आप लोगों को स्वागत करते हुए आप गीत को सुने फिल्म अनारी से।

दिल में तुझे बिठा के बंद कर लूंगी मैं अपनी आंखें और पूजा करूंगी तेरी। लता जी की आवाज, फिल्म का नाम फकीरा। उजाला रेडियो पर आप सुनें।

फिर याद किया मोहम्मद रफी लता जी एंड मुकेश जी से। आप इस गीत को सुने, फिल्म का नाम भी दिल ने फिर याद किया, और यह है उजाला रेडियो।

से दिल की दौड़ बांधे। फिल्म छाया और गीत के गाने वाले लता एंड मुकेश जी। उजाला रेडियो है सुनने वालों, कोई भी जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दफ्तर के समय आप तार करें, और आप भी हम लोगों के वेबसाइट पर देख सकते हैं www.ujala.nl।

से मिला के दिल प्यार कीजिए। एक पुराना सुना सुने लता जी की आवाज में फिल्म टैक्सी ड्राइवर से एक ऐसा ही पुराना सुंदर गीत आप प्रोग्राम में अब सुनिए।

तुझे दिल ढूंढ रहा है, सन ऑफ इंडिया, हाँ फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया, और गीत के गाने वाले मोहम्मद रफी एंड लता जी। ये उजाला रेडियो है।

क्या गीत है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर। सुनने वालों हाँ क्या कहना चाहता था हम कि आज का तमाम प्रोग्राम कर देता हूँ फिर आपका नाम। आशा जी

आशा जी के साथ मोहम्मद रफी साहब को भी आप सुने फिल्म वक्त से निकाला हुआ गीत, जो पेश की गई है उजाला रेडियो पर, वही स्टेशन जो आपके साथ साथ भी और हजारों लोग सुनते हैं।

0: amore mio, dove sei tu? Hey, kya ga rahi?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ
1: जाके। अच्छा

बहुत ही सुंदर गीत। फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर। नफरत से है मुझे नफरत, नफरत से है मुझे नफरत, और प्यार से है मुझे प्यार। यह है उजाला रेडियो आपका यार।

कोई अब तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं। लता जी से आप सुने फिल्म कर्तव्य का गीत और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

हम तुम से जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और फिल्म का नाम एक सपेरा एक

ugyanaz, Szona Csireia. Ujjala Radio, मैं हूँ लॉयड महावीर. हमारी तरफ से आप सभी को एक शुभ सुबह पेश कर रहे हैं. अनहेल खुद मॉर्गन, आज शुक्रवार 12 तारीख जून है और उजाला रेडियो के जरिए अभी थोड़ी देर में हम लाने वाले हैं आप लोग के फरमाइश और फरमाइश पेश किया जाएगा दिन हाक के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवाली के वास्ते 80 साल तख्त से फयादा जो कि आज आपका है.

Listen Wallo, Hamani Trefsavond op de Koek Shubdin, Peeske Jarahe. Het is vrijdag 12 juni, 12 tarikh jun ka program hai, jo aap sun rahe hain. Aur hum aapke saath aaj rahenge kareeban sham 1 baje tak. Lekin sabse pehle hum farmaish pesh karne wale hain. Den Haag ke rehne wala Shriman Mohan Suraj Bali ke waaste 80 saal ka janmdin jo ki aaj hai, bhagwan se prarthna kiya ja raha hai. लंबी आय के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए और यह भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे हर एक बीमारी से हर एक मुसीबत से दूर रखे श्रीमान मोहन सूरजवाली ये जन्मदिन बारंबार बधाई हो शुभकामना पेश है हार्दिक से बधाई हो हाँ के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवाली का 80 साल का जन्मदिन आज है तख्त सफी आड़ा है इस जन्मदिन की खुशी के मौके पर दनहाँ के रहने वाली प्यारी प्यारी धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति देव के लिए रोसिता और नादिया सूरजवाली पिता के लिए सिंह और सुधीर मुन्ना सिंह की तरफ से प्यारा प्यारा ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश किया जा रहा है

आज शुक्रवार है और वे 12 तारीख जून है। दनाह के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन है। तख्त सफ़े आ रहा है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्मपत्नी ईशाना पराह प्यारा प्यारा पतिदेव के लिए, रोसिता और नादिया सूरजबाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना प्यार दुलार के साथ फरमाइश के। दनहाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का आज 80 साल का जन्मदिन है। तख्त सफ़े आ रहा है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति देव के लिए, रोसिता और नादिया सूरजबाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए बधाई शुभकामना के साथ प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

आज शुक्रवार 12 तारीख जून को देन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन है, तख्त सफे आ रहा है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी लीफ लीफ धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति देव के लिए, रोशिता और नाजिया सूरजबाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए बधाई शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश के। श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर पत्नी श्रीमती ईशाना पराह पति के लिए, रोशिता और नादिया सूरजबाली प्यारा प्यारा पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह प्यारा प्यारा ससुर के लिए हार्दिक से बधाई शुभकामना प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

टेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। आज शुक्रवार 12 तारीख जून को और इस खुशी के मौके पर टेन हाग से धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख, पति देव के लिए रोशिता और नादिया सूरजवाली, पिता के लिए सुधीर मुन्ना सिंह, ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना के साथ फरमाइश के। डेनहाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख, प्यारा प्यारा लीफ लीफ मान के लिए रोशिता और नादिया सूरजवाली, पिता के लिए सुधीर मुन्ना सिंह, ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना, प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें।

आज शुक्रवार और भी 12 तारीख जून है, तो आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि दनहाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्यारी प्यारी धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति के लिए, रोसिता और नादिया सूरजमाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह प्यारा प्यारा ससुर के लिए हार्दिक से बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के। उमिरिया कट्टी जाए रे या घट्टी जाए रे, श्रीमान मोहन सूरजमाली 80 साल तख्त सफेद, आज आपका है, आपका जन्म दिवस है 80 साल का। इस खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी धर्म पत्नी ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति के लिए, रोसिता और नादिया सूरजमाली पिता के लिए, और सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

देन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरज बाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराख, प्यारा प्यारा पति के लिए रोसिता और नादिया सूरज बाली, पिता के लिए सुधीर मुन्ना सिंह, ससुर के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के श्रीमान मोहन सूरज बाली का 80 साल का जन्मदिन आज है, तख्त सफेद आज है। इस खुशी के मौके पर नीदरलैंड और सूरीनाम के रहने वाले समस्त परिवार सूरज बाली, लीन हेनरिक, ओम प्रसाद और फोनी की तरफ से भाई क्लीन फैमिली पराग, लीन हरिदत्त, इंदिरा, कमला, रोजा, सुनील, सीता और मीला बहनोई के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

दन हाँ के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबानी का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी लिव धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के। मोहन सूरजबानी का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर पत्नी ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज कर रहे हैं।

Den Haag kreeg hij wel een Sriman Mohan Surjwalika Assisal. 80ste verjaardag gaat je een goedje gemalke per. Aapke Piari Piari Dharampadni Ishana Para. Piara Piara lieve man. Pati Devi Kleber die Piara Mahabbat Kisaat verwijske. श्रीमान मोहन सूरजवाली 80 साल का जन्मदिन जो आज है बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं पेश है भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से हर एक बीमारी से दूर रखे उजाला रेडियो का प्रोग्राम जरूर आप सुन रहे हैं बाकी की फरमाइश है कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जारी करने वाले हैं 11 बजे के उस पार सुन वाला उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar €100 op UR Ujala Radio.

यू आर उजाला रेडियो, ये है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में फरमाइश जारी किया जा रहा है। परिवार सूरज बाली के लिए आज जबकि शुक्रवार 12 तारीख जून है, तो vandaag vrijdag 12 juni de jarige is Den Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरज बाली का 80 साल का जन्मदिन है, 80वां verjaardag है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए, और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से दूर रखे, आप सदा खुश रहें। श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज करें, फरमाइश करें ये नगमा।

के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवानी का 80 साल का जन्मदिन आज है, 80वां फरवरी है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी धर्मपत्नी ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति देव के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश के। श्रीमान मोहन सूरजवानी का 80 साल का जन्मदिन आज है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर फिर मैं आपकी प्यारी प्यारी लीफ लीफ धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना परा लीफ लीफ मान प्यारा पति देव के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ ये नामा को फरमाइश की है।

डेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर आपके प्यारी प्यारी धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना परा प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश के फिर एक और प्यार मोहब्बत के बयां पेश है आपके वास्ते। श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल तख्त सफ़ेद रहा है। खुशी के मौके पर पत्नी श्रीमती ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ बधाई शुभकामना के साथ पेश है।

0: डेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबानी का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश के। इस बार रोसिता और नादिया सूरजबाली प्यारा प्यारा पिता श्रीमान मोहन सूरजबाली के लिए 80 साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर तख्त फरियाडह के उपलक्ष्य पर बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।
1: ईश्वर रब खुदा भगवान के कई रूप हैं, लेकिन एक ऐसा रूप जिसमें सब समाया है वो है पिता। पिता क्या है ये शब्दों में बयां कर नहीं सकता, शायद पिता से बढ़कर इस जहां में कोई हो।

देन हाँ के रहने वाला श्रीमान मोहन सुरजवाली का आज 80 साल का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर लड़कन रोसिता और नादिया सुरजवाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश किए। श्रीमान मोहन सुरजवाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर रोसिता और नादिया सुरजवाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

जय हाँ किरण वाला श्रीमान मोहन सूरज बाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर रोसीता एंड नादिया सूरज बाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ दुलार के साथ फरमाइश के श्रीमान मोहन सूरज बाली का 80 साल तख्त सफिया रहा है। इस खुशी के मौके पर रोसीता एंड नादिया सूरज बाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार के साथ पेश करें।

डेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबालिका 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर रोसिता एंड नादिया सूरजबाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नाहमा को फरमाइश किए प्यार दुलार प्यार ही प्यार के साथ। उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। डेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबालिका 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर डेन हाग और रोटरडम के रहने वाले जीवन दर्शन अक्षय और अरशाद नाना के लिए जीवानो और दामनी नन्वा ससुर के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल का जन्मदिन आज है, 80वां व्यर्धक आज है। खुशी के मौके पर देन हाग और रोटरडम के रहने वाले जीवन दर्शन अक्षया एंड अरशाद नाना के लिए, जिफानो एंड दामिनी ननवा ससुर के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ नहमा को फरमाइश के। हाँ के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली आपके आज 12 तारीख जून को, आज शुक्रवार 12 तारीख जून को में आपका 80 साल का जन्मदिन है, 80वां व्यर्धक है। ये जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हार्दिक से बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है समस्त परिवार की तरफ से। समस्त परिवार सूरजबाली, समस्त परिवार पराख की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश है। आज आप अपना जन्मदिन धूमधाम के साथ परिवार के साथ जरूर मनाइए। उजाला रेडियो के जरिए जितनी से फरमाइश हमने पेश किए हैं, हम यही आशा कर रहे हैं कि आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा। एक वेंस द हेल फैमिली सूरजबाली एंड इन बिजोंडर द हेयर मोहन सूरजबाली एंड हेल फैन दफ मोई से फरियारी मनाइए। उजाला रेडियो के जरिए सुनने वालों फरमाइश देना है, स्टूडियो ईमेल naar info@ujala.nl, 15 aanvragen voor maar 100 euro. Tot straks na 12 uur, koffie en chai op Ujala Radio. Zeroer, zullen we naar koffie.

नम्र संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

जो बाहर आने पर याद आती हो। फिल्म तकदीर का गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज। मुझे तुम उजाला रेडियो है ये सुनने वालों। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमेशा देखें वेबसाइट पर ujala.nl। अगला गीत जो हम तैयार रखे हैं सुनाने के लिए वो होंगे उदित नारायण जी की आवाज में।

अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म डर से निकाला हुआ, हो जाला रेडियो। फिल्म आशिकी का गीत आप सुनिए।

0: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छूटा नहीं है मेरा।

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

फ्रीडम फ्रीडम, इश्क पहली सांस भी और इश्क ही है आखिरी दम. Yeah, the symphony just means sendless and such in jigger on the vocals.

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।
1: उजाला रेडियो पर एक बार फिर आप सभी को स्वागत है और अब शुरू होता है यहीं से यादगार गीतों का सिलसिला।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

रखती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए, यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

0: है।
1: उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है। और हाँ, तू मांगे है Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, गीत के गाने वाले लता जी, महेंद्र कपूर और मनहर उदास। सुनने वालों, अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में चलिए, पेश है एक बैठक गाना हरिदत्त जयराम की आवाज में, सुनिए।
1: मनुष्य के जन्म पायल है, मनुष्य रहा इंसान, एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गए मर, इस जन्म में देखा गधा बन के भोगे भैया हाफिज।
2: अच्छा भैया जयराम, तब जब तू मरिए तब तू कौन सी हो?
1: एक भैया हाफिज, जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जा, और जो मरब तैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन करनी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

और तुम कितनी सुंदर हो। फिल्म मोहरा का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। Wilt u ons bellen, dan altijd tijdens kantooruren op het nummer 020 409 0807.

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

हे सुनने वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वो ही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: क्या तेरी क्या है किसी ने मारा रूठ गया क्या तेरा बंदर टूट गया क्या हाथी
1: नाना
0: रूठ गया क्या तेरा बंदर टूट गया क्या हाथी
1: नाना
0: क्या फिर तुझसे बिछड़ गया तेरा कोई साथी
2: कौन
3: काबली वाला